निकट न आवे। बिशन भगत की ये फल होई, आद व्याद स्वै सकै न कोई। सम्मत सत रह सैस पचावन, हाड़ वधि प्रथम सुख दावन।

0: इतनी सेवा प्रवान करनी जी, कीर्तन कर दिया प्रहलाद की माफी बख्शी हूँ अगला प्रोग्राम सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज के विशेष समागमों के आप जी ने गुरबाणी कीर्तन निहाल कर रहे सन साडे बड़े ही सत्कार जो भाई गुरप्रीत सिंह जी ते उन्हां दा जत्था जत्थे दा बहुत बहुत धन्नवाद जो अज दे कल रोज तो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रब्बी बाणी दे अखंड पाठ साहिब आरंभ होए हन जो कि आपां पिंड बिलगा अते उस समूह इलाके दीआं संगतां वल्लों सलाना पंजवें पातशाही साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे ब्याह पुरब समागम मनाए जांदे ने ओ कल रोज तो अखंड पाठ साहिब आरंभ होए हन जिन्हां दे भोग कल सवेरे 10 बजे पैणगे। जो ये प्रोग्राम होंदे ने साडे उस इलाके दीआं संगतां वल्लों सलाना इस गुरु घर

सो उन्हें शिकायत की पंचम पातशाह को आके महाराज बाणी जुदा करिए। तो पाथी पोथियां जड़िया सी बाणी दियां तीन वो गोविंदवाल साहब बाबे मोहन कोल सन जेड़िया साहब सर गुरु नानक देव महाराज ने भगतां दी बाणी इकट्ठी कीती सी। गुरु नानक देव दी आप सी, गुरु अंगद देव दी, गुरु अमरदास दी और गुरु रामदास दी, वो तीन पोथियां जेड़िया सन बाबे मोहन कोल सी उन्हां नूं मंगवाया गया। मंगा के भाई गुरदास नूं सद्या गया, राम सार वाली जगह नियुक्त कीती गई है भी इत्थे बाणी रची जाएगी। सो तंबू लगा, महाराज ने सारी तैयारी कर ली। भाई गुरदास नूं जिवें छोटे पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज गुरबाणी लिखण वास्ते दसदे ने, सारा सीन आपदे सामने ढाडी कमलजीत सिंह जी बलगा, ढाडी सतपाल सिंह जी बासी, सरंगी मास्टर रणजीत सिंह बैनापुरी, गुरनाम सिंह भंडाल जूबा सिटी वाले ढाडी जत्था है

पढ़े गुरबाणी जे मन दा मन चितला के पढ़े गुरबाणी जे बंदा मन चितला के काम औखे तो औखे भी होण पूरे। इस बाणी दा जिन्हां ने अमल कीता होए बिच जहान दे अमर सूरे, जे ते बाणी नूं मनो बसार दिता पैणे जमा तो धौण दे बिच हूरे। गुरनाम सिंघां ना किसे तरह साथ देना धर्म राज दे कीता जे खड़ा मूरे। उत्थे केवल एक गुरबाणी सहारा बनदी है। मैं बेनती कर रहा सी कि संगतां आखण लगियां थोड़ी पातशाह नूं, पातशाह जी तुसी सरूप अपने सीस उत्ते टिकाओ ते हरिमंदर साहिब च लिजा के प्रकाश करिए। साहबां ने गल विच पल्ला पाया, दोवें हथ जोड़े, आंदे संगत जी मेरा सीस गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप दा भार नहीं चल सकदा। संगतां पुछण लगियां क्यों नहीं चल सकदा, आंदे जी इहदे विच जिहड़ी बाणी आ ना मैं साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज दे दर्शन नहीं कीते, मैं गुरु अंगद देव दे दर्शन नहीं कीते, मैं गुरु अमरदास दे दर्शन नहीं कीते, मैं सतगुरु कबीर दे दर्शन नहीं कीते, मैं सतगुरु रविदास जी दे दर्शन नहीं कीते, धन्ने दे नहीं कीते, सदने दे नहीं कीते, सहन दे नहीं कीते। इसलिए बाबा बुढ़ा जी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी तो लैके हुण तक पांच गुरु साहिबां दे दर्शन कीते आ, इहदे हकदार ने बाबा बुढ़ा जी। बाबा बुढ़ा जी ने शीश उत्ते महाराज दा सरूप रखिया बड़े सत्कार नाल। साहिब सोढ़ी पातशाह चौर कर रहे ने अपने हथी, संगतां शब्द पढ़दियां होईयां हरिमंदर साहिब अंदर महाराज दा सरूप लैके आए ने। ते सोढ़ी पातशाह ने आख्या बाबा जी हुक्म लईए। बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश कीता, हुक्मनामा आया सी संतां के कारज आप खलोआ। किन्ना सिख नूं माण बख्शिया सोढ़ी पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी नूं वी इह हकदार ने इस गल दे। अच्छा बाबा बुढ़े अंदर भी बड़ा संतोख सी, पंजां गुरुआं नूं आप हथी गुरता गद्दी ते बिठाया पर कदी जताया नहीं ते मैं ज्यादा सेवा कीती ते मैं हकदार हां गुरता गद्दी दा। अज बहुत सारे साडे संत गुरु दी फीलिंग लई जांदे आ, बन नहीं सकदे क्योंकि तत्ती तवी ते कौन बैठूगा, कोई नहीं बह सकता। दिल्ली दे चांदनी चौक अंदर शीश भी कोई नहीं जाके बार सकदा, जे लोड़ पै गए कलगीधर पातशाह वांगू चार पुत्र भी कोई नहीं मार सकदा। सो बाबा बुढ़ा जी ने हरिमंदर साहिब अंदर प्रकाश करके हुक्मनामा लिया। आखरी कविता आपके सामने ढाडी जथा है, इउं पेश कर रहा हां।

जितते पृथ्वी नवखंडन बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उदयान परमण है।

जाए आप पावे ले मिलाए तिते नेड़े नाही को दूर नानक नाम रहा पार पूर बसंत महला तीजा वर्षव दे हर चेत सुभाए ना राम नाम रस रहे गाए कोट कुट अंतर के प

गुरुमत खोज पर तब पकरे तन साबत रास वरिया पाखंड परम पाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगनाथ जगदीश गोसाई कर कृपा सार मिलावे।

हर किय सकल पवन चय पर हर शोभा हर प्रभ जन चय जात अजात कोई प्रभ त्यावै सब पूरे मानस तें चय से तन वडे वड पूरे हर जन जिन हर तार्यो हर उर चय हम टींडे टीम बहुत पारी हर तार कृपा प्रभु मेरे चय जन नानक गुरपो पाया जन नानक गुर पाया हर तुठे हम किए पतत पविचे बसंत हंडोल महला चौथा मेरा एक घन मनवा रह न सके नित हर हर नाम रस गीत दे ज्यो बारिक रसिक परयो तन माता तिन थन काढे बिलल बलि दे गोविंद ज्यो मेरे मन तन नाम हर भी दे वड्डा भाग गुर सतगुरु पाया विचकाया नगर हर सीधे रहो जन के सा सा सहते हर बिरो प्रभ हर विदय

जन्म जन्म के हो मैं मरने से हरे अमृत हर दल नीध है। हमरे कर्म न बिद्रोह ठाकुर तुम पैद रखो अपनी दया।

मन खिन खिन परम परम बहुत आवै तिल कर नहीं वासा पाइए। गुरु अंकद शब्द दारो सिर तारियो करम अंदर आण वसाइए। गोविंद जियो सा संगत मिल हर त्याइए। होमे रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए। रहो कर रतन लाल बहुमान कला दे मन पर म्या लेना सकाइए। जो उडा कोप गोह जखन काटे त्यो सतगुरु वस लहाइए। जने ऐसा सतगुरु साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए। जन पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाइए।

दुख पंज हर सदस्त तारो हृदय अंतर स्वामी सत्संगत मिल बुध लंज हर नामे हम प्रीत लगाने हम हर बिटो कुम वंज जनके पूर्व मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हर लंज।

ध्यान हर कीर्तन में उतम तुना नानक गौर मिल गाए गुना। बसंत महला पंजवां।

गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हिन ध्यान थान, गुरु प्रसाद कट कट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करणहार, इतूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सिंह लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ की नव दान, तेरिया संत जना के बच तूर, जप नानक स्वामी साध हजूर, बसंत महला पंजमा, सच परमेश्वर नित नवा, गुरु कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माए बाप, जाके सुन नहीं संताप,

पीछे तिनका लेकर हांकती, जैसे पनकत थ्रुटट हांकती, सर तोबन चाली लाडली रहाओ, तोबी तोवे बिरह बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पंत नाम जो राम रहया, अपने भगत पर कर दया, बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछु नाहे, पहरावा देखे ऊब जाहे, गर्भवती का ठाए नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काहे गर्भ बावली, जैसे पादों खूंब राज, तू तिससे खरी उतावली रहाओ, जैसे क्रंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध टूडे परदेस, अप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, पुत्र कृत्र का करे अहंकार, ठाकुर लिखा मंगन हार, फेड़े का दुख सहे जियो, पाछे किसे पुकार है पियो पियो, साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कहर रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सुरे की जैसी तेरी चाल, तेरी पुंछड़ ऊपर चमक बाल, इस कर्म है सू तू ढूंढ खाहे, अवसर किस ही के तू मत ही जाहे रहाओ, चाकी चाटे चून खाहे, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाहे, छीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ, कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईट ढेम, राग सारंग चौप दे महला पहला एक ओंकार, चौप दे महला पहला कर पहला एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर,

मन मोहे लिया मन मेरा समझ शब्द बिचारे मन मुखीन होची मत झूठी मंतन पीर शरीरे जबकि राम गुरु गीले राती राम जपत मन तीरे होमे छोड़ पही बैरागन तब साची सुरत समानी अकल निरंजन स्यों मन मानिया बिसरी लाज लुकानी पूर्व विखने तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण अधारा हर के नाम रति सुहागन नानक राम पतारा सारंग महला पहला हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापै जिहबा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभकाल संतापै रहाओ जब लग दर्शन परसे प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन पे देखत ही मन मान्या जल रस कमल बिकासी ऊनव कनहर गरजै बरसै कोकल मोर बैरागै तरब विहंग पोंगम कर पिर तन सुहागै कुचल क्रूप कुनार कुलखनी पिरका सहज न जान्या हरस रंग रस नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समान्या आए न जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे सारग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मान्या हर पाए प्राण आधारा रहाओ इन बिद हर मिलिए वर कामन तन सुहाग प्यारी जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभमान न ताको हिंसा लोभ विसारे सहज रवि बिर कामन पिर की गुरमुख रंग सवारे जारो ऐसी प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बिकारी अंतर रतन पदार्थ हित को दूरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम मूलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मिल सत्संग परम पद पाया आत्म राम रहया परपूर साओ सतगुर संत मिले संत पाइया किल बिख दुख काटे सब दूर आत्म ज्योत पई प्रफुल्लत पुरख निरंजन देख्या हजूर बड़े पग सत्संगत पाई हर हर नाम रहया परपूर अठसठ तीर्थ मजन किया सत्संगत पगनाए तूर दुर्मत विकार मिलीन मत होछी हृदय कुशुद्ध लागा मोहकूर बिन कर्मा क्यों संगत पाइए होमे व्याप्या रहा मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो संत संगत पग तूर नानक संत मिले हर पाइए जन हर पेट्या राम हजूर सारंग महला चौथा गोविंद चरणन को बलिहारी अभज जगत न जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाओ हृदय प्रीत बनी प्रभ कीरी सेवा सुरत बिचारी अंदर राम नाम जप हृदय सर्व कला गुणकारी प्रभ अगम गुच्चर रव्या सर्व ठाई मंतन अलख पारी गुर कृपाल पै तब पाया हृदय अलख लखारी अंतर हर नाम सर्व तरणी तर साकत को दूर पया अहंकारी तृष्णा जलत न कबहुं बूझे जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचित कृपा तारी नानक जिन को नदर पई है तिनकी पैज सवारी सारग महला चौथा हर हर अमृत नाम देहो प्यारे जिन उपर गुरमुख मन मान्या तिनके काज सवारे रहाओ जो जन दीन पए गुर आगे तिनके दुख निवारे अंध भगत करे गुर आगे गुर के शब्द सवारे हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावे रस बिचारे गुर प्रसाद अमृत सचिन्या ओए पावे मोख द्वारे सतगुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम धारे तिस आगे जियो देवो अपना हाँ सतगुर के बलिहारे मन परम दूजे पाए लागे अंतर अज्ञान गुबारे सतगुर दाता नदर न आवे ना उरवार न पारे सर्वे कट कट रव्या स्वामी
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲ ਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੇ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਸਤਿਕਰ ਮਾਨੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਅਤਿ ਮਿੱਠੀ, ਅਵਰ ਬਿਸਰ ਸਭ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਸ ਪਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਜਬ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਪਏ ਤਬ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਈ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਕਪਟ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸੁਣਾਏ, ਅੰਤਰ ਲੋ ਮਹ ਗੁਬਾਰਾ, ਤੂੰ ਕੂਟੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਜਬ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਨ ਮਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਖਾਨੀ ਰਹਾਉ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੋਵੋ ਜਨ ਉਪਰ, ਜਨ ਦੇਵੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਮੰਤਨ ਮਿੱਠ ਲਗਾਨੀ। ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਜਿਨ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਪਛਾਨੀ, ਪੁਰਖੇ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਚੁੱਕੀ ਆਵਣ ਜਾਨੀ। ਨੈਣੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ, ਸਰਵਣੀ ਕੀਰਤ ਸੁਣੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਭਾਨੀ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਗੁਰ

जपन राम नाम पढ़ो सार, राम नाम बिन थिर नहीं कोई, होर निहपल सब बिस्थार रहाओ। क्या लीजे क्या तजिए बोरे, जो दिसे सो छार, जिस बिख्या को तुम अपनी कर जानो, सा छाड़ जाओ सिर पार। तिल तिल पल पल औद फुन काटे, बूझ न सके गवार, सो किच करे जे हाथ न चाले, यो साकत का आचार। संत जना के संग मिल बौरे, तो पावे मोख द्वार, बिन सतसंग सुके ने न पाया, जय पूछो वेद विचार। राणा राव सवे कू चाले, झूठ छोड़ जाहे पसार, नानक संत सदा थिर निश्चल, जिन राम नाम आधार। सारंग महला चौथा कर तीजा धुपदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काहे पूत चगर था

हर हर हर टेक सब दिन सब रात रहाओ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर ब्यंत तू हर ब्यंत तू हर स्वामी तू आपे जा आपे ही जाने अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर जन ही हर कै निकट निकट हर निकट ही बाते ते हर के जन साधु हर भगात।

तट तीर्थ पर भवन करत रहत निराहरी। तें जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले

जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राए सो जन राम नाम लेव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संत हो,

संगे तेरी किधर कीर्त कर मकमाओ, एक ते लाख लाख ते एका, तेरी गत मित कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यो गोष्ट, हर साधन स्यो लेवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्स मन चाओ। सारग महला पांजवा, हर जियो अंतर जामी जान, करत बुराई मानक ते छुपाई, साखी पूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान, करे सोम पाक हिरे पर दरबा,

प्रभु भलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो वैष्णो पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल बिसवान। क्या हम कथ किस कथ नहीं जान है प्रभु भावे तिवे बुलान साध संगत की धूरी एक मांगो जन नानक पयो।

अमृत रसनी को बावर बिख स्यो गै रहा रहाओ दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जातो कौडी बदलहा कथूरी को गाह

प्रभु मिलावो निमख दर्श पेखा गयो। दृष्ट भई तब भीतर आयो मेरा मन अनदिन सीत लागयो। कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहत बाजयो। सारग महला पांजवा माई सत सत सत हर सत सत सद साधा बचन गुरु जो

पद जय गुण गाय आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपदा जहां सरवन हर कथा ना सुनिए तै महाभियान उदयानंद जहां कीर्तन साध संगत रास तै सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमक गोबिंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सारण सरण सरण प्रभ पावो दीजे साध संगत कृपानंद दीजे साध संगत कृपानंद नानक पूरहो है सर्ब मै सगल गुणा बिद जानंद सारग महला पांजवा अब मोय राम भरोसो पाए जो जो सरण भरियो करुणारद ते पवे तराय रहाओ सुख सोयर सहज समायो सहसा गुरे गवाए जो चाहत सोई हर कियो मन बांथ पल पाए।

बिसम भई पेख बिसमादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक जो चाग कुंगा मुस्कावत जैसे पुन बंद कर राख्यो बूजना आवत जावत जा कौर दे प्रगास भयो हार उआ की कही न जाए कहावत आन अपाव जेते किश कहिए तेते सीखे पावत अचैंत लाल ग्रह पीतर प्रगटियो अगम जैसे परखावत निर्गुण रंकार अबनासी अतुलो तुल्यो न जावत कहो नानक अजर जन जरे।

काजर में परिया बोहर फोर बोहर बोहर फिर चार काटे पीड़ डाल पर ठाडो खाए खाए मुस्कार गिरियो जाए रसातल परियो।

तिन सह संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अभिमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई देख चिरतर पई हो बिस्मना गुर सत गुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मुह ग्रह मैं पाया जन नानक तब तब जाई सारग मोहला पांजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर में उर्द तप करता निमक निमक गुण गाही रहाओ अनक जन्म भरम तो ही आयो मानस जन्म दुल पहाई गर्भ जो न छोड़ जो निकस्यो तो लागो अन ठाही करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही कण नाही तुह गहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो और ज परयो कुस माही धर्म राय ज पकरस बवरे तो काल मुखाय उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस महतक लेख लिखाही कहो नानका तिन जन बलहारी जो अलप रहे मन माही सारग मोहला पांजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिछरत होत मृत का ग्रह में रहन न पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सोहाई।

आठ पैर अपना प्रभ सिमरना, वड भागी हर पाई रहाओ। भलो कबीर दास दासन को, उत्तम सैन जन नाई, ऊंच ते ऊंच नाम देओ समदर्शी।

मार्ग चले तिनी सुख पाया, जिन से गोट से तरे बूढ़त कोर अंधकूप मह ते साधु संग पार परे, जिनके भाग बड़े है भाई तिन

बहुत बहुत धरिया अनकर आख सरूटा बिखमगार कर पहुंचे नाही संत सानथ पै लूटा बहुत खजाने।

पचासा खिन मैं साज सवार बिना है भगत बछल गुण तासा आंध को मैं दीपक बलियो गुरुदे की ओ परगासा कहो नान दर्श बे सुख पाया।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सत नाम, कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सत्य युगा।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

ताकी मेहमान गनी ना आवे कांखिए कह दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम।

काल पर हरे प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभ के सिमरन अन दिन जागे प्रभ के सिमरन पाओ ना व्यापे प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्वनिधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभु के सिमरन जब तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभु के सिमरन दरगे मानी प्रभु के सिमरन होय सो भला प्रभु के सिमरन सुफल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सब के सुजय प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए प्रभु जी वसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पदवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से पर उपकारी प्रभु को सिमरे तिन सदबलियारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख विहावे प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिन अंधक नेरे प्रभु को सिमरे बसे अर नेरे संत कृपा ते अंदन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबू न झूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन निश्चल आसन प्रभु के सिमरन कमल विगासन प्रभु के सिमरन आनंद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जिनको प्रभ मैया नानक ते जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पै सिद्ध जती दाते हर सिमरन नीच चौकुंड जाते

नानक के प्रसाद अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना भाई मनु नाम तेरे संग सहाय जय मां भैन दूत जम दले तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उधारी अनक पुन है चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा

सोच करे दिन सिर रात, जन मन की मैल न दंते जात। इस देही को वो साधना करे, मन ते कबू न बिकिया टरे। जल धोवे वो देह नीर, शुद्ध गावे काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहु मूच। बहु सियाण विजम का भोग्या पे, अनक जतन कर तिशन्ना त्रापै। पेख अनेक अगने मुझे, कोट पाव दरगह नि सिजे। शूट सनाही उप्याल, मोह व्यापे माया जाल। अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिली माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लूरे, साध संगे में शोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जैसा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आप को जो जाने नीचा, सो गनिये सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल किरीना, हर हर नाम दिन कर कर चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल शिष्ट साजना। सुख दुख जन संदिष्टेता, नानक पाप पुन्नी लेपा। निर्धन को तन तेरो।

प्राणे छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग सहे तिस पर हरे चंदन ले उतारे तुहे गर्त प्रीत पथम संग हो अंधकूप में पतत विकराल नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोग पचारा करे दिन रात बार पे के अंतर मल माया शब्द सुनाए किस करे छपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुहाना।

और भेख न काऊ भीन। आप रूप दिसे आप ना करे, आप जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर से नंकार तिसकी सीख तरे संसार। जो तुम पाने तिन प्रजाता, नानक गुण जन चन प्राता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करतन मेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत। नेरा पाप सियान बसगल ते रहत, सबके जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस ले लड़ लाए, तान तनंतर असमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जब नानक हरी श्लोक।

सब हस्त सवारी मंत प्रभ को कबू नाम सारी जय प्रसाद बाग में लगता ना राग प्रोहे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक

परम गत पावे जे प्रसाद सुसह समावे ऐसा प्रत्या व्रकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रकट संसार तिस्पा को मूल न मनो विचार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त दा को जाप जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासे राज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गाओ आए सो हर गुण गाओ।

किनके कछु ना हाथ श्लोक अगम घात पारम सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक विनवंता साध जिना की आचार्य कथा अष्टपदी साध के संग मुखो जलोद साध संग मल सगली खोद साध के संग मिटे अभिमान साध के संग परटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत मेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी साध के संग उच्चर मिले साध के संग सदा प्रफुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग यमत रस पुंचा साध संग हो सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतु तावे साध संग अस्तित मन पावे साध के संग माया ते पैन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग मां अपनीत साध संग कैसे उन्हें बैर साध के संग न बिगा पैर

कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्पो पाए कई कोट पाथर बिरख निभ जाए कई कोट पौन पणी वै संतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससे सून कतर कई कोट देव दान विंदर सिर चतर सरल समगरी अपने सूत धारे नान जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राजतम साधक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जग किन प्रसाद कई कोट भू प्रेत शुक्र मृगा सब ते नेरा सबू ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट बन कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बोजोनी फिरे कई कोट बैठते ही खाए कई कोट काले थपाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नान सब जी प्रभु के हाथे कई कोट भय भय रागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभु को खो जानते आत्म में पार बमलांते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलियो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी रखंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट हुए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार फस्यो पसार सदा सदा एक एक अंकार।

पहचाने। एतत गियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद आपना सुजे तिसकी जानो तिसना बुझे।

जिसको अर्पण मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डलावे, जिस प्राव अपना कृपा करे सो सेवक को किसरे डरे, जैसा सा तैसा निष्ठाया अपने कार्य में आप समाया, सो दत सो दत सो दत सिज्या गुर प्रसाद तत सब बुझिया जब

जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग नानक सो जन सदा रोग जो मंदिर को थामे थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़त रहे।

साधु संग मिल जोत प्रडावे। तिन संदन की बाचो तू नानक की आलो चाबूर मन मूर काय बिल लाइये। प्रभु लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभु देवनार दयाल तू तेज तार। जो कुछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे जान। कौन बस थाई तेरे संग लपट रो रस लोभी पतंग। राम नाम जर जपिर दे माए नान बस ती कर जाए। जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब महान।

ब्रह्म मेरे सदा पूर सहस दा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो चन कमल स्यों लागे प्रीत भक्त करो प्रभ की नित नीत।

गया। इस पुण्य श्रद्धा सतपुरी रव रया सब संग सूरी इसका साधन लिया मिलाये नान भक्ति राम समाये सुख विसरे जे काल न बने सुख विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जिन सब की दिया सो क्यों विसरे जे जीवन जिया सो क्यों विसरे जे अग्न में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों विसरे जे बिकते कांडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर पूरे तदे बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपराह नाम जपावो जप

कथि नया वैतोड़ कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पा है जुगा जुगंतर खा ही खा है हुक्म हुक्म चलाए राह नान विकसावे परवा साचा साहिब साच नाय पाखे पाव अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अग्ञ रखिये जद सह दरबार मोह के बोलन बोलिए जो सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानके वै जानी सब आपे सचार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नान गाविय गुणी निदान गाविय सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हसु कर लै जाए

कहना सुनया सात संतो ज्ञान सुनया सरकार सुना सुनया पर पाप है मान सुनया लाके सहित नाने पर सदा विकास सुनया दो पाप का नाश

स्वामी मन्ना की गद कही न जाए देखो कह पिछे बसताए कागद करम न लिखण हार मन्ने का बह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए।

देखो मन जाने मन कोए, मन ने मार्ग ठाक न पाए, मन ने पशु प्रगट जाए, मन ने मग न चले पंथ, मन ने धर्म सती संबंध।

असंकार, असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूरमो पाख सार, असंख मोल विलाय तार,

मन या मन की तापाओ अंतर्गत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे में ना ही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्ता बाणी भरमाओ सत स्वान सदा मन जाओ कवन सवेला भगत कवन कवन तत कवन वार कवन सुरतिमा कवन जतो आकार वेल न पाया पंडती दे होवे ले पुराण वक्त न पायो का दिया दे लिखन ले कुराण तेतवार न जोगी जाने तुम्हार न कोई जा करता सृष्टि को साजे आप जान सोई क्यों करे आखा क्यों चाला ही क्यों वर्णी क्यों जाना नानकी आखण सबको आखा एक दो एक सियाणा

साचा सोए देखो आख्या बोर बिगाड़ तन के सिर का बारा गावार सो दर के हा सो कर के आज तुवै सर्व संभाले वाजे नादन एक शंका केते वावन हारे केते राग परि स्यो कहियन केते गावन हारे गावा तोनु पौन पाणी बैसंदर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लई धर्म विचारे गावा ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावा इंदन दासन बैठे देवतियां धरनाले गावा से समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावा वीर करारे

मंडले गावा जोत महाबल चूरा गावा खानी चारे गावा खांडव मंडल भर पंडा कर कर रखे तारे से तनु गावा ज्योत पावन रते तेरे पवित्र साले होर के ते गावन से मैं चितनया बन्ना ने क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सचा सची नाई है पी हो सीधा न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगे पाते कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या किता अपना जस दी वड्याई ज्योत बाबा सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साहब साहेब नानक रहंद जाई मुंदा संतोख शरण पर चोली ध्यान की करै प्रभु तिंता काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत

ना कोय। राते रते थे ते वार पण पणे अग्नि पाताल तस्वे धरते थाप रखे धर्मसाल तस्वे जे जुगत के रंग। जिनके नाम अनेक आनंद कर्मी कर्मी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान। नदरी कर्म पवे निशान कतब काई उथे पाए नानक आजा पे जाए। धर्म खंड काहे हो धर्म ज्ञान खंड काया को। कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते।

किते सद्वदनाद किते किते देवी वेश किते देवदान मन किते किते रतन समंद कितिया कहानी कितिया वाणी किते पान नरेंद कितिया सुरति सेवा किते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान पर जान तिथे नाभ नोद कोडानंद शर्म खंड के बाणी रूप तिथे काड़त कड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कतिया न जाए देखो कहे पिछे बचताए तिथे कड़िए सुरत मात मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिदा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे हो न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन में राम रहा परपूर तिथे

साहिब जी, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्रीमुख वाग पातशाही दसवीं छपे छंद त्वै प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहंजे रूप रंग अरेख पेको कह ना सकत कह। अचल मूर्त अनुपव प्रकाशम तुझ कह जय। कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिजय। त्रै पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंत्रण कहत। तब सर्व नाम कते कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजा छंद। नमस्तु अकाले नमस्तु कृपाले नमस्त रूपे नमस्त नूपे नमस्त भेखे नमस्त लेखे नमस्त काये नमस्त जाये नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त नामे नमस्त ठामे नमस्त कर्म नमस्त धर्म नमस्त नाम नमस्त दाम नमस्त जीते नमस्त पीते नमस्त बाहे नमस्त डाहे नमस्त नीले नमस्त नादे नमस्त छेदे नमस्त गादे नमस्त गंजे नमस्त पंजे नमस्त उधारे नमस्त पारे नमस्त सो एके नमस्त अनेके नमस्त भूते नमस्त जूपे नमस्त निकर्मे नमस्त निर्भरमे नमस्त निर्देशे नमस्त निर्पेशे नमस्त निर्नामे नमस्त निर्कामे नमस्त निर्धाते नमस्त निर्गाते नमस्त निर्दूते नमस्त भूते नमस्त लोके नमस्त शोके नमस्त निरतापे नमस्त थापे नमस्त तरमाने नमस्त निदाने नमस्त गाहे नमस्त वाहे नमस्त दुर्वर्गे नमस्त सर्गे नमस्त प्रभोगे नमस्त सुजोगे नमस्त अरंगे नमस्त भंगे नमस्त गम्मे नमस्त सतरमे नमस्त जलाश्रे नमस्त नराश्रे नमस्त जाते नमस्त पाते नमस्त माजवे नमस्त सतराजवे देस देशे नमस्त पेशे नमस्त निर्दामे नमस्त निर्वामे नमो सर काले नमो सर दयाले नमो सर रूपे नमो सर भूपे नमो सर खापे नमो सर थापे नमो सर काले नमो सर पाले नमस्त सत देवे नमस्त पेवे नमस्त जन्मे नमस्त सो बनमे नमो सर गौणे नमो सर पौने नमो सर रंगे नमो सर भंगे नमो काल काले नमस्त सत दयाले नमस्त वरने नमस्त मरने नमस्त जरार नमस्त करतार नमो सर धंधे नमो सत बंदे नमस्त नुसाके नमस्त नृके नमस्त रहीमे नमस्त करीमे नमस्त नंदे नमस्त महंते नमस्त सत रागे नमस्त सुहागे नमो सर सोख नमो सर पोख नमो सर करता नमो सर हरता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर दयाले नमो सर पाले चात्री छंद प्रसाद रूप है नूप है जू है भू है लेख है भेख है नाम है काम है देह है बेह है जीत है पीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है नाद है जय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है भरण है अगंज है बंज है जूझ है जंज है मीक है नवीक है दंद है वंदन भूज है सूज है काल है जाल है ला है जा है नंत है मंत है अलीक है निरसीख है निर्लंब है असंभ है अगम है जम है भूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गाह है मान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रजा छंद। नमो सर मान समस्ति निदाने नमो देव देवे भेखिए भेवे नमो काल काल नमो सर्वाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नंगी नाते नृसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चन चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ति विभूते कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज जवेश्वरम परम रूपे नमो जोग जवेश्वरम परम सिद्धे नमो राज जवेश्वरम परम विरदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी भरमी भोगी भुगते नमो जोग जयश्रम परम जुते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देव इस धर्म नमो रोग हरता नमो राव रूपे नमो शासन नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्त शनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो श्रेष्ठे नमो तंत्र तंत्र सदा सजदानंद प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी
ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕਰਤਾ ਦੋ ਦੁਆਰ ਦੰਗ ਅਗਮੋਗ ਹਰਤਾ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਲਨ ਸਦਾ ਸਰਦਾ ਸਿਧਾਤਾ ਦਿਆਲਨ ਸ਼ੇਦੀ ਭੇਦੀ ਨਾਮ ਕਾਮ ਸਮਸਤ ਉਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤ ਸਦਾਮ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਸ਼ਨ ਜਲਿਆ ਥਲਿਆ ਭੀਤੈ ਭੈ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਜੂ ਐ ਦੇਸ ਐ ਭੇਸ ਐ ਭਜਾਮ ਕਰਿਆ ਛੰਦ ਅਗਾਦੇ ਵਾਦੇ ਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਮਾਨੇ ਸਮਸਤੇ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤਮੰ ਨਿਰਾਤੇ ਨਮਸਤਮੰ ਪਰਮਾਤੇ ਨਮਸਤਮੰ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤਮੰ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤਮੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਮੰ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਦੇਸੇ ਨਮੋ ਸਰਭੇਸੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਧ ਸਾਜੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੇ ਨਮੋ ਮਾਂ ਮਾਹੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸੋਗ ਸੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰ ਜੀਤ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੀਤਨ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਿਆਨ ਨਮੋ ਪਰਮਤਾਨ ਨਮੋ ਸਰ ਮੰਤਰ ਨਮੋ ਸਰ ਜੰਤਰ ਨਮੋ ਸਰ ਦਿਰਸਨ ਨਮੋ ਸਰ ਕਿਰਸਨ ਨਮੋ ਸਰ ਰੰਗੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਖਿਜੇ ਭੀਜੇ ਸਮਸਤ ਪ੍ਰਸੀਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਰੂਪੇ ਕੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਹਿਰਦ ਸਿਧ ਨਵਾਸੀ ਚਰ ਪ੍ਰਸੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਖਲ ਜੋਗੇ ਚਲ ਭੋਗੇ ਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜੇ ਖਲ

चतर जगर करता चतर जगर हरता चतर जगर दाने चतर जगर जाने चतर जगर भरती चतर जगर भरती चतर जगर पाले चतर जगर काले चतर जगर पासे चतर जगर वासे चतर जगर मानिए चतर जगर दानिए चाची छंद न सतरे न मित्रे न भरम न पितरे न कर्म न गाये जन्म जाये न चित्रे न मित्रे परे पवित्रे प्रति से अधि से आदिर से किर से भक्ति छंदय प्रसाद करते के सिज दे से के बिज पेसे के गंज कर्मे के पंज भरमे के बिज लोके के दित सुके के बदूत भरने के विभूत करने के राज प्रवाह है के धर्म तुझा है के शोक भरने के सर्वा भरने के जतन कृति है के शत्रन क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूपे के अनुपे के आद अदेवे के आप अपेवे

बुद्ध है जेती बाणत भिन भिन तो तेती तुमरा लखाना जाए पसारा कह सजा प्रथम संसारा एक कह रूप अनूप सुरूपा रंग प्यो राव के भूपा अंड जेरे से दिजकिनी उतज खान बोरा दीनी कहो भूल राजा वह बैठा कहो सिंट प्यो शंकर कैटा सगरी सिट दिखाए चंबवा जुगा सुरू सुअंब अवरछा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संग करो दुष्ट ते उठव तुत पाता सकल मलेश करोड़न घाता जे अतुदा सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुम मरे पुरख जीवन भव परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याई है ताके काल निकने हैं जो कल को एक बार त्याई है ताके काल निकने हैं रचा हुए ताए सकाला दुष्ट रिष्ट तत्काल

पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चन मारे हमारा अपना जान क्रोध पारा हमरे दुस्वे तुम गहो आपा दे मोह बचावो। सुखी वसे मोर परवार सेवक सिख सवे करतारा मोर छान कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिये। पूर्ण होए हमारी आसा तुर पिन की रे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याहूं जो वरचाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सुतर हमारे मारिया बा दे मुझे वरिया मन काल का त्रास वरिया जो सदा हमारे पच्चा।

सकल प्रजा जिन्हें आप सुवारी सेवकन को सब कुन सो दियो शत्रन को पल मोद कियो कटकट के अंतर की जानत पले वरे की पीर प्रशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशका भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कड़कड़ के पटपट की जाने जबद कर करा कर धारा प्रजा धर तब दे अपारा जबा कर दो कबू तुम मिल दे तर सबू

कोई बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लै त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीनार दा ध्यान करके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है। इस वेले श्री अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता परंत आप जी के पावन स्वरूप के सुखासना की सेवा हुई है। चौपी साहब का जाप होया है। बाणी पढ़द्या सुखासना की सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। इस वेले आप जी के पावन सवारा साहब सचखंड विखे जा रहे हैं। चाले पाउंदी आग्या बख्शो रस्ते विजवाद कर दे साई होना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु सतनाम

माता गंगा नूं याद रखदिआं अपने नगर दी धी और अपनी अपने नगर दे दोहते दी अणख नूं याद रखदिआं कदे मूंह ना लाओगे। याद रखियो, गुरु तो वड्डा साडे लई कोई नहीं है, ना गुरु तो वड्डी कोई ताकत है, ना गुरु तो वड्डा कोई राजा, ना कोई राजनीति, ना कोई राजनेता है। याद रखना, महाराज साहब जी का त्यौहार मना रहे हो, खुशियां दे नाल मनाओ, पर उन्हां दी अणख उन्हां दी गैरत अपने जमीरां च जाग दी जरूर रखियो। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां, जिन्ना क समा अनाउंस होया सी वह पहुंच चुका है। महाराज साहब जी मेहरामत करन बिलगे नगर मौ साहेब और फरी मौट की समूह संगत के सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के सतगुरां दा प्रेम, सतगुरां प्रति भावना, अदब और सत्कार की दात बख्शन। इन

आओ एक शब्द होर श्रवण करिए। हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहन आया। हर प्रभ काज रचाया, कोई भी धर्म हो गए, दुनिया के जिन्हें भी मर्जी धर्म ने, उस च व्याह आनंद कारज की मर्यादा पक्की है। भावें मुसलमान है भावें हिंदू है, हिंदू व्याह करते ने, साडे सिखां च असी इस नूं आनंद कारज कहिंदे आ, मुसलमान वीर निकाह कहिंदे ने। तो धर्म का कोई भी अंग होवे उस च ये रस्म मर्यादा अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह जीवन के पंथ के विचों निकलना ही पैंदा, संसार है। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी अज के दिहाड़े जो आप जी मना रहे हो, उन्होंने विआह पुरब, खुशी है, प्रसन्नता है, उमा है, चाओ है, मंगल है, खेड़ा है। उस खेड़े के संबंध में ये मंगलामई बाणी असी गायन कर रहे हाँ, और शब्द बड़ा प्यारा उन्हों का अपना ही उच्चारण किया होया। राग भैरवी दे विच बंदिश आधारित है, बंदिश भाई साहब भाई गुरमेश सिंह जी की यह तर्ज है, मैं बड़े प्यार ना गाउना हाँ।

बयान कौन आया? खुद आप परमेश्वर। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी परमात्मा खुद आप परमात्मा सरगन स्वरूप दे विच प्रगट होए ने इस धरती दे उत्ते। और कोई कहिंदे ने कि रब वर्गे रब दी न्याई, पर यह भी लफ्ज़ जेड़े ने पूरे नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज आप खुद आप ही रब ने। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी बारे पट लिखते ने, बड़ा कीमती वचन है श्री गुरु ग्रंथ।

बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल। सो एक बार फिर हजूरी कीर्तनिए भाई साहब भाई सरबजीत सिंह होना दे समूह जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आप जी दे सन्मुख बिलगा निवासी भाई साहब भाई कमलजीत सिंह बिलगा भाई गुरनाम सिंह जी पंडाल उन्हां दा ढाडी जथा आप संगतां दे नाल गुरु पातशाह दा पावन इतिहास सिख इतिहास आप जी नूं सरवण कराएगा। इन्हां तों उपरंत साडे पास जो कि पिछले एक हफ्ते तों ढाडी जथा भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी जौहल बिधीपुर वाले जो कि पहुंचे हैं उन्होंने हाजरी भरनी है। आओ हुण दीवान की फिर आरंभता करदे हां कौम दे ढाडी कौमी आप जी दे नाल गुरु इतिहास सरवण कराउणगे। आओ उन्हां तों इतिहास सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

नाम अज बिच सन सारदे जी हो, हो, हो, हो। इतिहास का सत्कार करद बेलगा निवासी और आले दुआले दंगत वालों बेहद माया आई है साड़ी सरैणी बिचो बीबी जसवंत कौर खालसा ढाडी जिन्होंने एक साल मेरे नाल भी ढड़ते साथ दिता है वो भी बेहद माया दे गए ने भाई साहब भाई बलिहार सिंह जी नत्ता वाले वो भी बेहद माया दे गए ने ओनू भी पहला पहला बड़ा शौक सी उदो असी कबीचरी करते होंगे कबीचरी करन दा पर एक भगती है एदे विच पूरा उतरना एदे विच काम करके किसे स्टेज नू पाउणा बड़ा औखी गल है ये राह बड़ा औखा सच दा राह है एदे विच बड़ी बारी इम्तिहान हुंदा बंदा डोल जांदा सो ओह भी बेअंत माया दे गए ने छेती थोड़ा चिर कमीशरी कीती छड़ गए सो होर संगत वालों सरदार सुरिंदर सिंह जी बिलगा वह भी बेअंत माया दे गए ने उन्होंने साथियों वालों भी बेअंत माया आई है साढ़े ढाडी सराणी विचों आ भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी अमरजीत सिंह जी जौल वे सारे साथी भी बेअंत माया दे गए ने सो पातशाह मालड़ी तो चल के शंकर गए शंकर तो भंगाले गए भंगाले तो बिलगे पहुंच गए कई बार असी बारते सराप विच फस जाने इस गल तो सानू पातशाह ने बाहर कढ़िया सी वे सराप ना दी कोई चीज नहीं ते नाले जेनू गुस्सा ही आ गया गुस्से विच आके किसे नू सराप दिता वह भगत ही नहीं हो सकता वह संत नहीं हो सकता वह कोई गुरु नहीं हो सकता क्योंकि नाम जपया जांदा मन दी शांति लई ते जे नाम जपन वाले नूं गुस्सा आ गया फिर नाम जपन दा भी कोई फायदा नहीं पातशाह बिलगे गए बिलगे वालियां ने बड़ी सेवा कीती वैसे उन्हां जमाना विच इहो जिहा साधन नहीं सी फिर भी जदों पातशाह उत्थे गए सत कुलियां हुंदियां सी उन्हां नूं चाह चढ़ गया पातशाह नूं देख के नमस्कार कीती है चाह पानी पिलाया जो सेवा उन्हां कोल होई जथा शक्त उन्हां ने कीती है पातशाह बड़े खुश होए संतां दर्शन करके निहाल हुंदियां महाराज दे पवित्र बचन सुनदे ने पावन बचन सुनदे ने मन नूं शांति आउंदी है सो पातशाह नूं लंगर तैयार करके छकाया पातशाह अमृत वेले मौर साहब नूं जाण दी जदों तैयारी करन लगे ना इशनान कीता वह बस्तर उत्थे हाले है आ कल परसों उत्थे मेला सी दिखाए जांदे हर मेले ते पातशाह दा चोला पातशाह दा पजामा पातशाह दा दशाला पातशाह दी चंदन दी चौंकी जिहते बह के इशनान कीता सी सो जदों पातशाह तरन लगे ना मेरा ना मीह बरसाता बिलगे आलियां ते पुछिया दसो की चाहुंदे आंदे पातशाह साडियां सत कुलियां इन्हां नूं हर साल अग लग जांदी है पातशाह आंदे नहीं अज तों बाद ये बेलगा हो गया इहनूं अग नहीं लगूगी सत्तां कुलियां तों सत दरवाजे बना दिते सिमरना दे के पातशाह ने रंग चाड़ दिता नाम दा लो मेरां दे बिच आके केड़ी केड़ी चीज बख्शे देने किवें बिलगे आलियां ते सोढ़ी पातशाह मेहर कर देने सारा सिंह आपदा सामने ढाडी जत्था हे इहो मैं

0: मन बसावे
1: नाम जन का माना वसया बाजे शब्द कनेरे
0: है नानक बंदे साहेब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार
1: साचा नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया
0: करचा तसक मन आए वसया जिन इच्छा सब बजाइया
1: सादा कर बार किता गुरविट हो जिस दिया ए वडियाइया
0: है नानक सुनो संत हो शब्द तेरो प्यारो साजा नाम मेरा आधारो बाजे
1: शब्द तित करा सपागे शबाद वाजे कला जित कर तारिया
0: पंच दूत तित वास कीते काल कंट कमारिया
1: राम पाया तुद जिन को से नाम हर कहलागे
0: है नानक तैस को आदत कर अनहद वाजे
1: आनंद सुनो वट पागियो सगल मनोरथ पूरे
0: पार ब्रह्म ब्रह्म पाया उतरे सगले मसूरे
1: करोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
0: संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी
1: सुनते पनीत कहते पवित सत गुर रहे आपर पूरे
0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सलोक
1: गुरु पाणी पिता माता तरत महात
0: दिवस रात दो दाई दाया खेल सक